0: आओ जी,
1: आओ ना,
0: ऐसे घबराओ ना।
1: बादल सा उजाला है, रेशम सा अंधेरा है,
0: महफिल ही ऐसी है,
1: भूल भुलैया जैसी है।
0: आने को आ जाओगे,
1: वापस ना जा पाओगे,
0: और जाके